0: ओ मारागा किम फेले ओलेन थुय मोसा मा खोला कि नो लाफा कि पोर कुन समरे माक
1: मुनो रु कुन सम खले लवानु याका
0: आयो किन रो खला यान्यु निती थोरे रे शमुटा थेनमु
1: नि मोता से नि मुनकेला नि उइरा एयो
0: किन रो बिर होका थु वाटर मनी हु किन रो बादन नकावंचेन वो हुइपा
1: मसियाका मुकिहनन ले यो पाही
0: एयो काही थेरु माराका काबिर होका थु वाटर के बादन नकन वो नि हुइपा किन रो खला का ओर इरी हेलम खालु मनी हु नवे थो एनो मुइरि हो खला ओसु वेले शे थु खमु हा मोता नमन मनी सुफु रियाया
1: Masika hiyo yeyo wakalimu osu eletu. Mwenye isufu na masomiha. Mutumo sosome. Tivo ana warewe siso.
0: Kahiva avo. Mwenye isufu ene yo wo. O kile iliha wera okumu kati. We hamela. O wanipa. Ofane lana. Nuwaligele ihanti siana we. Mahiku otene. Nitivo awosa. Anjutu saa malumu wancheno wakuvea masia.
1: Ike kai.
0: Ayo, muiwe. Murwe manaka.